0: जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं, थोड़े को हजारों यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी और कंडे ते बेरी दा दरख्त थे,

0: niște camertini.
1: Ciapunia de câine? De perite trăbui bândan?
0: Nu, baba ji, aici perite e coi oegi. Jis tu kaam urke chapri chupki lan dene, te chitte ho ur jaan dene.
1: Chitte ho ur de jaan dene?
2: Haan, papa ji. Te nari e vaz a rai se.
0: Kago hans kare.
1: Kago hans kare? Kago hans kare. Betan Guru Nanak Dev ji di bani hai. Tusi inj karo, sirf Gondwal chale jao. Uthe Guru Amar Das ji da darbare, Guru Nanak di alai bani da sona.
0: Guru Amar Das?
1: हां बेटी उन्हां नूं हर चीज दा ज्ञान है उन्हां ने दर्शन कर दे नहीं तुहाडे पैर अपने आप तुहानूं उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल ते तुहाडे दिल तांगे
0: किन्नी दूर है गोइंदवाल
1: एथों थोड़ी दूर दरिया दा पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल
0: अच्छा बाबा जी असी चलने आ
1: परमेश्वर भली करेगा कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम
3: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानिवे सो सिर कपल उतार जो सिर साई नानिवे सो सिर की देखाए उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे
4: थाए ओ साहब जी की गल है पैना तुसी नहीं गया रिता
0: असी किस तरह जानदे सोचते हैं पहले पूछ लिया हुंदा
4: की पूछना सी
0: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है पर असी साडे कोल ना दिल चोल ना धर्म ना तमड़ा
4: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन में आई हूं संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा
0: फिर भी तुहाडियां लोड़ां
4: मेरियां लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैनूं चाहीदा की जो कुछ मैनूं लोग दे जांदे ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थे सौ जाना मैं उगन हारा कोगन पल्ले नहीं
0: धन हो तुसी
4: तन ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जरा सब नु अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है और दर ते जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असह ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान न करी, ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैं, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वह माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वह कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हू अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एक लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख के चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्होंने चरणा उते आप सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलियो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साढ़े को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु

तुलसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

मत भूले। कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताह कैसे। कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी हो के मांग तू फिर तू भीख, कहूं महादान हो के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

लोक मथे रखने वास्ते तेरे चरना से पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सुख दीदार होते करने वास्ते जान ते फिर इस मन ना जान इस ख्याल ना जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत मुरारे मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा कृपा देखो धन सो मीत धन सो दे मेरे सजन ते

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना ते फिर बई गंगा दा इशनान करना ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ यां ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है जेड़ा सारियां नू परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन, गुरु तारन नहीं सी कीता ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता, आपने गुरु धारण नहीं कीता। कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा, कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे, रात सारी नींद नहीं आई ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

क्यों भई कोई राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया एक मग लिया ते आंदे जांदे राहियां नू पानी पिलाना शुरू कर दिता। भई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन प्यासियां जांदियां हन तृप्त होके आउंदियां हन मन दियां आशावां लेके जांदियां हन मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके इस सेवा नूं सामने रखदे होए पाई साहिब भाई गुरुदास जी सारियां नूं

साहिब आज फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए।

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफ्ज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफ्ज हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का

माधुदास बैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन।

दक्षिण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना कर दिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे गौतक गुरु जान दे। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तो थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया

मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां, बैरागी नहीं। फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदिया प्यास नहीं सी लेंदी। उसका शरीर कंब रहा सी, फुल कंब रहे सन, आवाज कंब रही रही, कंब रही सी आवाज। ओली जी कहन लगा, तुसी गुरु गोबिंद सिंह? गुरु जी हस पे अते उसके तप द्वारा कठोर बने हुए शरीर नू इहूं तकिया जिवे उन्हां दियां अखां दो हाथ होण, अते उसनू कुट के अपने सीने नाल ला लैण लई उतावले हो। अते तीर जे बोले उस माधोदास बैरागी, तू कौन है? ता माधोदास बैरागी चरणा नू चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा, मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब हुई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधोदास नू उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल कहा, जानदे हुए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बनिया? तां माधोदास ने अपनी कहानी सुनाई, एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, ओ मरी, ओ दे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए,

सुनदा पिया ते जदों ये भी सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे पुत्र साहबजादा अजीत सिंह जुजार सिंह चमकौर की गढ़ी में शहीद होए छोटे साहबजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल के लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। ये सारियां गल्लां माधोदास ने सुनिया उहदियां अखां विचों अथरू वह तुरे पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती कि मैनूं आग्या दिओ अते मैं जाके जुलम दा जिहड़ा राज है अते जालम जिहड़े ने उहनां नूं खत्म कर दे। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जाता। गुरु साहब ने अपने 5 तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। 5 सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब वल

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है तां सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया। वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे जिन्हों की उम्र 8 साल तो भी थले उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियों नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु के नन्ने नन्ने मासूम बच्चियों नूं द्वार विच चुनिया गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो। नीहां विच साहबजादे चिणे गए, देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे। हल चला दियो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दियो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरा नाल अहलकारा नाल जरनैलों के नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वह भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और 7 साल जुलम दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार के बीच कलयुग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी। ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करिए।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेत न कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देतो हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतो हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासो बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत का।

ने गुरु नानक दा रूप बनाया, गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

मुस्कराया। हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिगत बोलो श्री वधाई दीती से। बार आई कोठरी विचों वधाई दीती, मैता जी वधायों

विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं ता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैं ता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज अज बालक

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नूं माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगते हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनूं मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

शरण आया हाँ। उदो तो मेरे मन नु शांति, हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन, ए पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं। ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चितवदे, सारे ही चंगा चितवदे हैं। ये सब तेरी कृपा है, ये तेरी मेहर है। तू तो मैनू इनिया बख्शिशा कीतिया हैं, इनिया रहमत कीतिया हैं पातशाह, हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ। चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है, क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है। ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन। ते सतगुरु तेरी मेहर है, तेरी कृपा है।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उन्हां दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर, उन्हां दे चरणां ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है।

अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर जोत राम प्रकाशा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए तां फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है,

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हैं। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए। पर ये जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान ले है कि इह सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

कृपा की थी ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन किसे

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जोत है।

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिली तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, बहुते नाटक चेटक देखण विच भी सुख नहीं, सुख नाही बहुत देश कमाए। कई इंसान देखे है देशा परदेसा विच भजे फिरदे ने, पर फिर भी सुख ही नहीं, सुख उन्हां दे भागां विच फिर भी नहीं, सुख ना ही बहुत देश कमाए, फिर सुख किथे। साहब जी कहंदे ने सर्व सुखां हर हर गुण गाए। कदी भी देख लेना जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे, ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैण। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानूं तंग नहीं करणगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं,

क्योंकि वाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे देहधारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच